0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विवाह भोज के दृष्टांत पर चिंतन किया और याद दिलाया कि क्रिस्ते आनंद हमें इससे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है, भले ही गलत फहमियां होने का खतरा हो। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 11 अक्टूबर को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु एक राजा द्वारा अपने बेटे के लिए विवाह भोज की तैयारी करने के बारे बताते हैं। बेटे की शादी किसी भी परिवार के लिए एक खास मौका होता है और ये आनंदित पिता अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। वे एक भोज तैयार करते हैं और बहुत से लोगों को निमंत्रण देते हैं। संत थॉमस अक्विनस कहते हैं,
1: Bonum dicitur diffusivum sui,
0: कि अच्छाई स्वतः फैलती है। संत पापा ने कहा, कहानी में दी गई तस्वीर हमारे जीवन के अनुभव के संदर्भ में इस विचार को बताती है। जब कुछ अच्छा होता है तो यह एक ज्योति जलाती है जो हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दृष्टांत में इतने अच्छे निमंत्रण के बावजूद दावत में आने के बजाय अतिथि नहीं आते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं।
1: Alcuni anzi infastiditi insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: कुछ लोग नाराज होकर राजा के संदेश वाहकों का अपमान करते और उन्हें मार डालते हैं। पोप ने कहा,
1: Anche questo purtroppo succede.
0: दुर्भाग्य से ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
1: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte frainteso e respinto.
0: क्योंकि हम जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उससे हमेशा समझा, पहचाना या सराहा नहीं जाता। सच तो यह है कि कभी कभी जानबूझकर इसका गलत मतलब निकाला जाता है और उससे मना कर दिया जाता है। फिर भी संत पापा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti.
0: मना किए जाने पर राजा शादी नहीं टालते या उत्सव रद्द नहीं करते, इसके विपरीत वे और भी अधिक लोगों को निमंत्रित करते हैं। अपने नौकरों को सड़क पर भेजकर उन्हें बुलाते हैं ताकि दुल्हा दुल्हन की खुशी सभी के लिए एक वरदान बन सके। पोप ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम यहाँ अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र किसे दर्शाते हैं। संत जेरोम ने राजा को स्वर्गीय पिता, दुल्हे को येसु और दुल्हन को कलीसिया बतलाया है। पोप ने आगे कहा, हम भी मुख्य पात्र हैं जिन्हें प्रभु ने अपने साथ अपना जीवन साझा करने और अपने साथ जीवन के वाहक बनने के लिए चुना है। विवाह भोज हमारी है और विवाह मंडप हमारी कलीसिया एवं घर, वह जगह जहां हम रहते हैं और जहां राजा के बेटे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए अपने प्यार का इजहार करते और हमारे हाँ का इंतजार करते हैं। हम उनसे वहां मिलते और बपतिस्मा के श्वेत वस्त्र में दुल्हन की तरह होते हैं और भले कार्यों के गहनों से सजे होते हैं जो हमें ईश्वर एवं एक दूसरे के करीब लाता है। इसलिए हम जिस आनंद की घोषणा करते हैं वह बनावटी नहीं है, यह गहरी, ठोस और असली है। यह खूबसूरत है उन लोगों के चेहरों के समान जिनसे हम मिलते हैं। यह उतना ही असली है जितना हमारे काम, मुस्कान, आंसू, हाथ मिलाना और दयालुता जो हमारे दिन को भर देते हैं। यह दुनिया के उद्धार के लिए ईश्वर का वरदान है। इसलिए संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore.
0: आइए हम प्रभु की माँ मरियम से इस खुशी में बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना करें। भले ही यह समझ में ना आए, हम इस खुशी को हमेशा और हर जगह उदारता, साहस एवं विश्वास के साथ बताएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया एवं दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया।
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi.
0: सबसे पहले संत पापा ने सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा को याद किया जो शनिवार को संपन्न हुए, जिसकी जानकारी देते हुए पोप ने कहा, कल मंतुआ में सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा की गई, जो येसु के पौत्र हृदय के उर्सुलाइन धम बहनों के धमसम की संस्थापिका हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच उन्होंने जरूरतमंदों और वंचित लोगों की साहसपूर्वक मदद की। उनका आदर्श हम सभी में पुनः एक बार दुनिया में सबके लिए सुसमाचार के प्रेम के साक्षी बनने की इच्छा जागृत करे। इसके बाद यूक्रेन की याद करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Nella martoriata Ucraina.
0: परेशान यूक्रेन में युद्ध के कारण उसकी सीमाओं से बहुत दूर, खासकर सबसे गरीब देशों में लोगों को तकलीफ हो रही है, जहां बहुत से लोग अनाज के आयात पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में शामिल पार्टियों से हार्दिक अपील करता हूं कि वे काला सागर के माध्यम से अनाज के सुरक्षित आवागमन की इजाजत दें। लाखों लोगों की रोजी रोटी को युद्ध बंधक नहीं बना सकता। तत्पश्चात कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों की याद कर उन्होंने कहा, आज इटली में कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों का दिन है। मैं काम से जुड़ी चोटों और विकलांग लोगों से जुड़े राष्ट्रीय मजदूर संघ का अभिवादन करता हूं और रोकथाम की कोशिशों को बढ़ावा देता हूं। पोप ने इस अवसर पर संत पेतरस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित अथवा संचार माध्यमों से उन्हें सुन रहे सभी विश्वासों का अभिवादन किया, विशेषकर रोम वासियों एवं विश्वभर से तीर्थयात्रा में एकत्रित विश्वासियों को, और अंत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: प्यारे मित्रों, हाल ही में कुछ मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को मेरे फेफड़े में एक छोटी गांठ मिली है, यह शुरुआती चरण में है। चिकित्सकों ने अपने सुझाव में मुझे इसकी सर्जरी की सलाह दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। मैं आपके आध्यात्मिक सामीप्य के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रविवार।
1: Grazie, buona domenica!

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदहवें ने रविवार ये देवदूत प्रार्थना के उपरांत अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों का खुलासा किया कि उन्हें फेफड़े में हुई एक छोटी गांठ के संबंध में सर्जरी कराना होगा। संत पापा ने कहा, चिकित्सकों ने मेरे फेफड़े में एक छोटा गांठ पाया है, यह शुरुआती चरण है। उन्होंने मुझे इसकी सर्जरी हेतु सुझाव दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सर्जरी के दिन निर्धारित किए जा चुके हैं। आध्यात्मिक सामिप्य के लिए आप सबों का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने को आप सबों की प्रार्थनाओं में सुपुर्द करता हूं। संत पापा कल 13 अक्टूबर को जमिल्ली अस्पताल में दाखिला होंगे। अपने स्वास्थ्य की घोषणा के उपरांत उधर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेल्ला ने संत पापा को प्रेषित अपने संदेश में कहा, इटली के लोग आपके बहुत करीब हैं और आपको अपना स्नेह प्रकट करते हैं। मैं अपनी ओर से परम धर्माध्यक्ष के लिए हृदय से दुआ करता हूं, आपको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और आप जल्दी तथा पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएं। वहीं रोम धर्म प्रांत के विकर ने संत पापा के सेहत के संबंध में अपने निकटता के भाव अर्पित करते हुए उन्हें रोम की संरक्षिका कुमारी मरियम सालुस पोपोली रोमानी के हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी प्रार्थनाओं का सामिप्य प्रकट किया। संत पापलियो चौदहवें ने सोमवार 12 अक्टूबर को चिरकोलो दी सन पेत्रो रोम के एक चैरिटी संघ के सदस्यों से मुलाकात की जो परम धर्म पीठ के दान पुण्य कार्यों में मदद करती है। संत पापा ने उन्हें अपने दिए गए संदेश में कहा, करुणा के आपके कार्य प्रार्थना के स्रोत, आत्मा के कार्य और आपकी आध्यात्मिक त्याग की अभिव्यक्ति बने। संत पापा ने संघ के कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे कलिस्स के खूबसूरत चेहरे को बनाने में मदद करते हैं जो गरीब और सबसे कमजोर लोगों के बीच सुसमाचार का साक्ष्य बनता है। रोम के इस संघ की स्थापना 1869 में की गई थी जो सूप किचन संचालन करते हुए आतिथ्य स्थलों और केंद्रों का संचालन करती और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाती है। संघ के आदर्श वाक्य प्रार्थना, काम और त्याग से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने करुणा शब्द पर चिंतन किया जो अन्य तीन बातों को अपने में समाहित करती है। संत पापा ने प्रार्थना की महत्ता पर ध्यान आकर्षित कराया जो करुणा के कार्यों की आधारशिला है। उन्होंने कहा, प्रार्थना वह संबंध है जिसके द्वारा करुणा के कार्य अपने को दूसरों के लिए देने हेतु हम प्रेरित होते हैं। उन्होंने कार्य के संबंध में कहा कि यह हमें ईश्वर के प्रेम को साझा करने में मदद करता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन और सेवा के कार्य हेतु समर्पित होते हैं। प्रार्थना हमारे लिए प्रभावकारी तब होता है जब हम इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की ओर अभिमुख होते हैं। त्याग के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह करुणा का हृदय है जो हमें अपने जीवन में प्रार्थना और कार्य के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने चिरकोलो दी सन पेत्रो के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए जो उनकी प्रेरिताई हेतु रोम के विभिन्न धर्म प्रांतों से दान संग्रहित करते हैं। पेत्रुस का पेंस रोम के धर्माध्यक्ष को रोम शहर की देखरेख करने के साथ साथ परम धर्म पीठ को पूरी कलिस्स की जरूरतों में सहायता देने हेतु मदद करता है। संत पापलियो चौदहवें ने कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल जोवानी रे बप्तिस्ता के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने कार्डिनल जोवानी रे के त्याग पत्र उपरांत सोमवार को उन्हें एक पत्र प्रेषित किया और 6 वर्षों से अधिक परम धर्म पीठ की निष्ठामय सेवा हेतु उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष स्वरूप कार्डिनल रे की भूमिका कलिसिया और संत पापा मेरे लिए और सबों के लिए प्रेरणा का एक शिक्षा प्रद साक्ष्य रहा। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि रोमन कोरिया में कार्डिनल रे के कई और संवेदनशील पदों ने उन्हें परम धर्माध्यक्ष खासकर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का भरोसामंद सहयोगी बना दिया।
1979 में पोलिश संत पापा ने कार्डिनल रे को वैटिकन राज्य का आलंकनकर्ता नियुक्त किया। 8 साल बाद उन्होंने पर्म धर्मपीठ धर्माधर्शकों की धर्म सभा का उन्हें सचिव नियुक्त किया और वेस्कोवियो का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। सन 1979 में कार्डिनल रे वैटिकन राज्य के स्थानपन अधिकारी का पद ग्रहण किया, जिसे उन्होंने 11 सालों तक बाखूबी संभाला। संत पापा लियो ने कहा कि कार्डिनल का सेवा में मजबूत विश्वास और लगनता को हम उनके परिवार से मिले मेहनती स्वभाव से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य ऊपर से शक्ति इस बात का साक्ष्य है कि वे हमेशा से जानते हैं कि प्रभु और उनकी कृपा से शक्ति कैसे मांगनी और लेनी है। कार्डिनल रे ने पर्म धर्म पीठ की सेवा अपने जीवन के कम उम्र में ही शुरू की। वे पनामा और ईरान में प्रेरिताई हेतु राजनीतिक सेवाएं दी और महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी बेनेल्ली के व्यक्तिगत सचिव के तौर पर भी कार्य किए। उधर वैटिकन में चल रही आमोरिस लेतित्से की बैठक के चौथे दिन कार्डिनल होसे कैनो ने विवाह के संबंध में निरंतर प्रेरितिक सहचर्य पर बल दिया, जबकि ईश शास्त्रीय मरियम मार्सेल्ला मज़िनी ने कहा कि विवाह संस्कार को सिर्फ मनाया ही नहीं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कार्डिनल होसे ने कहा, कलिस्से के पुरोहितों को चाहिए कि वे युवा विवाहितों के अनुभवों को ध्यान से सुने। वे ख्रिस्तीय समुदाय से क्या उम्मीद करते हैं और वे अपनी प्रेरितिक जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं। वहीं मंजिनी ने कहा, आमोरिस लेतित्से में पति पत्नी का एक दूसरे को कहा गया हाँ अपनी परिपूर्णता नहीं है बल्कि यह एक सफर की शुरुआत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने विवाह भोज के दृष्टांत पर चिंतन किया और याद दिलाया कि क्रिस्त आनंद हमें इससे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है, भले ही गलत फहमियां होने का खतरा हो। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 11 अक्टूबर को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Diye bhaiyo em behno shubh ravivar.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
0: आज के सुसमाचार पाठ में यीशु एक राजा द्वारा अपने बेटे के लिए विवाह भोज की तैयारी करने के बारे बताते हैं। बेटे की शादी किसी भी परिवार के लिए एक खास मौका होता है और ये आनंदित पिता अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। वे एक भोज तैयार करते हैं और बहुत से लोगों को निमंत्रण देते हैं। संत थॉमस अक्विनस कहते हैं,
1: Bonum dicitur diffusivum sui,
0: कि अच्छाई स्वतः फैलती है। संत पापा ने कहा, कहानी में दी गई तस्वीर हमारे जीवन के अनुभव के संदर्भ में इस विचार को बताती है। जब कुछ अच्छा होता है तो यह एक ज्योति जलाती है जो हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दृष्टांत में इतने अच्छे निमंत्रण के बावजूद दावत में आने के बजाय अतिथि नहीं आते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं।
1: Alcuni anzi infastiditi insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: कुछ लोग नाराज होकर राजा के संदेशवाहकों का अपमान करते और उन्हें मार डालते हैं। पोप ने कहा,
1: Anche questo purtroppo succede.
0: दुर्भाग्य से ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
1: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto.
0: क्योंकि हम जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उससे हमेशा समझा, पहचाना या सराहा नहीं जाता। सच तो यह है कि कभी कभी जानबूझकर इसका गलत मतलब निकाला जाता है और उससे मना कर दिया जाता है। फिर भी संत पापा ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti.
0: मना किए जाने पर राजा शादी नहीं टालते या उत्सव रद्द नहीं करते, इसके विपरीत वे और भी अधिक लोगों को निमंत्रित करते हैं, अपने नौकरों को सड़क पर भेजकर उन्हें बुलाते हैं ताकि दुल्हा दुल्हन की खुशी सभी के लिए एक वरदान बन सके। पोप ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम यहाँ अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र किसे दर्शाते हैं। संत जेरोम ने राजा को स्वर्गीय पिता, दुल्हे को येसु और दुल्हन को कलीसिया बतलाया है। पोप ने आगे कहा, हम भी मुख्य पात्र हैं जिन्हें प्रभु ने अपने साथ अपना जीवन साझा करने और अपने साथ जीवन के वाहक बनने के लिए चुना है। विवाह भोज हमारी है और विवाह मंडप हमारी कलीसिया एवं घर, वह जगह जहां हम रहते हैं और जहां राजा के बेटे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए अपने प्यार का इजहार करते और हमारे हाँ का इंतजार करते हैं। हम उनसे वहां मिलते और बपतिस्मा के श्वेत वस्त्र में दुल्हन की तरह होते हैं और भले कार्यों के गहनों से सजे होते हैं जो हमें ईश्वर एवं एक दूसरे के करीब लाता है। इसलिए हम जिस आनंद की घोषणा करते हैं वह बनावटी नहीं है, यह गहरी, ठोस और असली है। यह खूबसूरत है उन लोगों के चेहरों के समान जिनसे हम मिलते हैं। यह उतना ही असली है जितना हमारे काम, मुस्कान, आंसू, हाथ मिलाना और दयालुता जो हमारे दिन को भर देते हैं। यह दुनिया के उद्धार के लिए ईश्वर का वरदान है। इसलिए संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore.
0: आइए हम प्रभु की माँ मरियम से इस खुशी में बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना करें। भले ही यह समझ में ना आए, हम इस खुशी को हमेशा और हर जगह उदारता, साहस एवं विश्वास के साथ बताएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया एवं दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया।
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi.
0: सबसे पहले संत पापा ने सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा को याद किया जो शनिवार को संपन्न हुए, जिसकी जानकारी देते हुए पोप ने कहा, कल मंतुआ में सिस्टर मरिया इग्नासिया इसाकी की धन्य घोषणा की गई, जो येसु के पौत्र हृदय के और सुलायन धम बहनों के धमसम की संस्थापिका हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के बीच उन्होंने

0: से अनाज के सुरक्षित आवागमन की इजाजत दें। लाखों लोगों की रोजी रोटी को युद्ध बंधक नहीं बना सकता। तत्पश्चात कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों की याद कर उन्होंने कहा, आज इटली में कार्यस्थल पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों का दिन है। मैं काम से जुड़ी चोटों और विकलांग लोगों से जुड़े राष्ट्रीय मजदूर संघ का अभिवादन करता हूँ और रोकथाम की कोशिशों को बढ़ावा देता हूँ। पोप ने इस अवसर पर संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित अथव संचार माध्यमों से उन्हें सुन रहे सभी विश्वासों का अभिवादन किया, विशेषकर रोम वासियों एवं विश्वभर से तीर्थयात्रा में एकत्रित विश्वासियों को, और अंत में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: प्यारे मित्रों, हाल ही में कुछ मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को मेरे फेफड़े में एक छोटी गांठ मिली है। यह शुरुआती चरण में है। चिकित्सकों ने अपने सुझाव में मुझे इसकी सर्जरी की सलाह दी है। अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। मैं आपके आध्यात्मिक सामीप्य के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रविवार।
1: Grazie, buona domenica!

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदवे ने रविवार ये देवदूत प्रार्थना के उपरांत अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों का खुलासा किया कि उन्हें फेफड़े में हुई एक छोटी गांठ के संबंध में सर्जरी कराना होगा। संत पापा ने कहा, चिकित्सकों ने मेरे फेफड़े में एक छोटा गांठ पाया है, यह शुरुआती चरण है। उन्होंने मुझे इसकी सर्जरी हेतु सुझाव दी है, अतः उनके सुझाव अनुसार मैंने आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, सर्जरी के दिन निर्धारित किए जा चुके हैं। आध्यात्मिक सामिप्य के लिए आप सबों का धन्यवाद अदा करता हूं और अपने को आप सबों की प्रार्थनाओं में सुपुर्द करता हूं। संत पापा कल 13 अक्टूबर को जिमिल्ली अस्पताल में दाखिला होंगे। अपने स्वास्थ्य की घोषणा के उपरांत उधर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेल्ला ने संत पापा को प्रेषित अपने संदेश में कहा, इटली के लोग आपके बहुत करीब हैं और आपको अपना स्नेह प्रकट करते हैं।

मैं अपनी ओर से परम धर्माध्यक्ष के लिए हृदय से दुआ करता हूँ, आपको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और आप जल्दी तथा पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएं। वहीं रोम धर्म प्रांत के विकर ने संत पापा के सेहत के संबंध में अपने निकटता के भाव अर्पित करते हुए उन्हें रोम की संरक्षिका कुमारी मरियम सालुस पोपोली रोमानी के हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी प्रार्थनाओं का सामीप्य प्रकट किया। संत पापलियो चौदवी ने सोमवार 12 अक्टूबर को चिरकोलो दी सन पेत्रो रोम के एक चैरिटी संघ के सदस्यों से मुलाकात की, जो परम धर्म पीठ के दान पुण्य कार्यों में मदद करती है। संत पापा ने उन्हें अपने दिए गए संदेश में कहा, करुणा के आपके कार्य प्रार्थना के स्रोत, आत्मा के कार्य और आपकी आध्यात्मिक त्याग की अभिव्यक्ति बने। संत पापा ने संघ के कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे कलिस्स के खूबसूरत चेहरे को बनाने में मदद करते हैं, जो गरीब और सबसे कमजोर लोगों के बीच सुसमाचार का साक्ष्य बनता है। रोम के इस संघ की स्थापना 1869 में की गई थी, जो सूप किचन संचालन करते हुए आतिथ्य स्थलों और केंद्रों का संचालन करती और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाती है। संघ के आदर्श वाक्य प्रार्थना, काम और त्याग से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने करुणा शब्द पर चिंतन किया, जो अन्य तीन बातों को अपने में समाहित करती है। संत पापा ने प्रार्थना की महत्ता पर ध्यान आकर्षित कराया, जो करुणा के कार्यों की आधारशिला है। उन्होंने कहा, प्रार्थना वह संबंध है जिसके द्वारा करुणा के कार्य अपने को दूसरों के लिए देने हेतु हम प्रेरित होते हैं। उन्होंने कार्य के संबंध में कहा कि यह हमें ईश्वर के प्रेम को साझा करने में मदद करता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन और सेवा के कार्य हेतु समर्पित होते हैं। प्रार्थना हमारे लिए प्रभावकारी तब होता है जब हम इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की ओर अभिमुख होते हैं। त्याग के संबंध में संत पापा ने कहा कि यह करुणा का हृदय है, जो हमें अपने जीवन में प्रार्थना और कार्य के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने चिरकोलो दी सन पेत्रो के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जो उनकी प्रेरिताई हेतु रोम के विभिन्न धर्म प्रांतों से दान संग्रहित करते हैं। पेत्रुस का पेंस रोम के धर्माध्यक्ष को रोम शहर की देखरेख करने के साथ साथ परम धर्म पीठ को पूरी कलिस्य की जरूरतों में सहायता देने हेतु मदद करता है। संत पापलियो चौदवी ने कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल जोवानी रे बप्तिस्ता के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। संत पापा ने कार्डिनल जोवानी रे के त्यागपत्र उपरांत सोमवार को उन्हें एक पत्र प्रेषित किया और 6 वर्षों से अधिक परम धर्म पीठ की निष्ठामय सेवा हेतु उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष स्वरूप कार्डिनल रे की भूमिका कलिसिया और संत पापा मेरे लिए और सबों के लिए प्रेरणा का एक शिक्षाप्रद साक्ष्य रहा। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि रोमन कोरिया में कार्डिनल रे के कई और संवेदनशील पदों ने उन्हें परम धर्माध्यक्ष खासकर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का भरोसामंद सहयोगी बना दिया। 1979 में पोलिश संत पापा ने कार्डिनल रे को वैटिकन राज्य का आलंकनकर्ता नियुक्त किया। 8 साल बाद उन्होंने परम धर्म पीठ धर्माधर्शकों की धर्म सभा का उन्हें सचिव नियुक्त किया और वेस्कोवियो का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। सन 1979 में कार्डिनल रे वैटिकन राज्य के स्थानपन अधिकारी का पद ग्रहण किया, जिसे उन्होंने 11 सालों तक बाखूबी संभाला। संत पापालियो ने कहा कि कार्डिनल का सेवा में मजबूत विश्वास और लगनता को हम उनके परिवार से मिले मेहनती स्वभाव से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका धर्माध्यक्षीय आदर्श वाक्य ऊपर से शक्ति इस बात का साक्ष्य है कि वे हमेशा से जानते हैं कि प्रभु और उनकी कृपा से शक्ति कैसे मांगनी और लेनी है। कार्डिनल रे ने परम धर्म पीठ की सेवा अपने जीवन के कम उम्र में ही शुरू की। वे पनामा और ईरान में प्रेरिताई हेतु राजनीतिक सेवाएं दी और महाधर्माध्यक्ष जोवानी बेनेल्ली के व्यक्तिगत सचिव के तौर पर भी कार्य किए।
उधर वैटिकन में चल रही आमोरिस लेतित्से की बैठक के चौथे दिन कार्डिनल होसे कैनो ने विवाह के संबंध में निरंतर प्रेरितिक सहचर्य पर बल दिया, जबकि ईश शास्त्रीय मरियम मार्सेल्ला मज़िनी ने कहा कि विवाह संस्कार को सिर्फ मनाया ही नहीं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कार्डिनल होसे ने कहा, कलिस्से के पुरोहितों को चाहिए कि वे युवा विवाहितों के अनुभवों को ध्यान से सुने। वे ख्रिस्तीय समुदाय से क्या उम्मीद करते हैं और वे अपनी प्रेरितिक जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं। वहीं मंजिनी ने कहा, आमोरिस लेतित्से में पति पत्नी का एक दूसरे को कहा गया हाँ अपनी परिपूर्णता नहीं है बल्कि यह एक सफर की शुरुआत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद कि तुरंत इसका पता चला और इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, आमतौर पर जब इन चीजों का समय पर पता चलता है तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। कार्डिनल ने पोप के लिए दुनिया भर के लोगों के प्यार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पोप लियो को हर कोई कितना प्यार करता है, उनकी तारीफ करता है और उन्हें फॉलो करता है, और लोगों को बढ़ावा दिया कि वे पोप के इस प्रक्रिया के दौरान अपना सामीप्य दिखाते रहें। एक पत्रकार ने पूछा, क्या यह अचानक हुआ? कार्डिनल परोले ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा पोप ने कहा, यह ईश्वर का आश्चर्य है। सोमवार को टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एसाओ किकोची ने पोप के साथ अपनी निजी मुलाकात के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने बतलाया कि सुबह 9:30 उन्हें कारितास इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के साथ पोप से मिलने का मौका मिला। कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने उन दोनों के साथ मुलाकात में व्यक्तिगत बातचीत की। कार्डिनल किकोची ने अंत में कहा, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि यह छोटी सर्जरी है और उन्हें अपने शरीर में कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा है। और कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी यात्रा की अपनी योजना बदलने से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने का फैसला किया है। हमें पोप को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। इस दौरान दुनिया भर की कलीसियाओं के धर्मगुरु पोप लियो 14वें और उनके फेफड़े में छोटी स्थानीयकृत गांठ को हटाने के लिए सर्जरी में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष सारा मुलायली ने एक्स पर आश्वासन दिया कि वे पोप लियो के लिए दुआ करेंगी और ईश्वर से उनकी सुरक्षा, सामीप्य और देखभाल के लिए प्रार्थना की। वेस्टमिनिस्टर के महाधर्माध्यक्ष और इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड मोथ ने भी विशेष प्रार्थना की अपील की। भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने पूरे देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, इस समय आइए हम अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक एकजुटता के जरिए संत पिता के प्रति अपना सामीप्य दिखाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनकी सफल सर्जरी, जल्द ठीक होने, अच्छी सेहत और नई ऊर्जा के लिए हमारे धर्म प्रांतों, पल्लियों, धर्म संघी समुदायों और संस्थानों में विशेष प्रार्थनाएं की जाएं। आइए हम पौत्र मिस्सा के दौरान और विश्वासों की प्रार्थना में भी संत पिता के लिए विशेष मतलब शामिल करें। जब हम पौत्र रोजरी के महीने में हैं, आइए हम अपनी दैनिक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं में पोप लियो 14वें को याद करें, खासकर पौत्र रोजरी माला विनती के माध्यम से। कलीसिया की धन्य कुंवारी मरियम, प्यार से उनके लिए प्रार्थना करें और इलाज एवं ठीक होने के इस समय में उनका साथ दें। और इसी तरह थाईलैंड, फिलीपींस एवं अमेरिका के धर्माध्यक्ष भी अपने विश्वासियों के साथ पोप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पोप लियो की सर्जरी की तैयारी के दौरान रोम के विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना जेमेली अस्पताल में रोजरी विनती का नेतृत्व करेंगे और पोप के अगुस्तीनी साथी रोम के निकट माता मरियम तीर्थस्थल में प्रार्थना के लिए एकत्रित होंगे। रोम धम्म प्रांत के लिए पोप के प्रेरित विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना 6:00 अस्पताल के संत जॉन पॉल द्वितीय चैपल में रोजरी माला विनती का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने संत पिता को कुंवारी मरियम की ममता में मध्यस्थता को सौंपते हुए धम्म प्रांत के प्रत्येक पल्ली और धम्म संघी समुदाय को एक ही समय में रोजरी माला विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। जेमेली की प्रार्थना वैटिकन मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित की जाएगी और यह हमारे वैटिकन न्यूज यूट्यूब चैनल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पोप के अगुस्तीनी साथियों ने भी विश्वासियों को उनकी सेहत एवं उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस कास्टिलो ने पोप की सर्जरी की घोषणा के तुरंत बाद लीमा में लास नाजरेनास तीर्थस्थल में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। पोप लियो के पुराने धम्म प्रांत चिकलायो में सोमवार शाम को महागिरजाघर में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता धर्माध्यक्ष एडिनसन फारफान कोर्डोवा ने की और पूरे अफ्रीका में किनशासा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अम्बोंगो जो अफ्रीका एवं मडागास्कर के

कार्तिक धम्म अध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। धम्म अध्यक्षों, पुरोहितों, धम्म संघों और लोक धर्मियों को प्रार्थना में एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया है। क्यूबेक के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जेराल सिप्रियन लाइक्रक्स ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कलीसिया को परिवारों और दंपतियों के लिए उपस्थित रहने की जरूरत है। यह बात वैटिकन की नवीनतम प्रेस ब्रीफिंग में हुई, जिसको अमोरिस लेतित्सिया के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार विषय पर किया गया। इस मीटिंग को पोप लियो 14वें ने प्रेरितिक प्रबोधन की 10वीं सालगिरह पर बुलाई है। मीटिंग जिसमें पोप लियो 14वें, पूर्वी कलीसिया के प्रमुख, धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष, विवाहित जोड़े और विशेषज्ञ शामिल रहे, बुधवार 14 अक्टूबर को समाप्त होगी, ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों का बेहतर तरीके से साथ कैसे दे सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। श्रोताओं, मैनिफिका ह्यूमानिटास का दूसरा अध्याय हमारे लिए सामाजिक धर्म शिक्षा के मूलभूत आधार और सिद्धांतों की चर्चा करता है। जब हम सम्मान की बात कहते हैं तो हम इस शब्द का उपयोग सदैव उसी तरह से नहीं करते हैं। कभी कभी हम उसे नैतिक मानवीय सम्मान के रूप में उपयोग करते हैं, मुख्यतः उस रूप में जहां एक व्यक्ति अपने कार्य या कार्य करने के विकल्पों का चुनाव करता है। वहीं दूसरी जगह में हम सामाजिक सम्मान के बारे में विचार करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की परिस्थितियों और समाज में ठोस रूप से मिलने वाले सम्मान को व्यक्त करता है। वहीं दूसरे परिदृश्यों में हम इसका उपयोग अस्तित्वगत सम्मान के रूप में करते हैं। कहने का अर्थ, जिस रूप में व्यक्ति अपने अस्तित्व को देखता और जीवन के मूल्य को समझता है, सम्मान के इस रूपों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इन विचारों के अलावे हम अस्तित्व विषयक सम्मान की गहराई और महत्वपूर्ण स्तर को भी पाते हैं। यह वह सम्मान है जो हर मानव के जीवन का हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसे जीवन प्राप्त है। ईश्वर उसकी चाह रखते, उसकी सृष्टि करते और उससे प्रेम करते हैं। कोई भी पाप, असफलता, अपमान या परित्याग एक मानव के वृहद जीवन मूल्य को कम नहीं कर सकता है, जिसकी चाह ईश्वर करते, जिसे उन्होंने अपने समान गढ़ा है। श्रोताओं, इस भांति हर मानव का मूलभूत सम्मान ना तो अपने में हासिल किया जा सकता और ना ही कमाया जा सकता है, और ना ही हमें इसे न्यायसंगत घोषित करने की जरूरत है। हाल ही की घोषणा दिनितास इन्फिनिता इस विषय पर कलिस्से के विचारों को संक्षेपित करती है। हर मानव अपने में एक अद्वितीय सम्मान को वहन करता है जो उसके अस्तित्व का अटूट हिस्सा है और जो हर परिस्थिति, अवस्था या हालात में बना रहता है, जिसका सामना वह व्यक्ति कभी भी दूसरे शब्दों में सदैव और बिना किसी अपवाद के कर सकता है। हर मानव का सम्मान दो कारणों से अनंत रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं। पहला, ईश्वरीय प्रेम के कारण जो हमें अपने संग मित्रता हेतु बुलाते हैं, यह अनंत है, और दूसरा उनका प्रेम जो हमारे लिए पूर्ण रूपेण शर्तहीन है और हम अपनी ओर से कितनी भी कोशिश कर लें तो भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इसे मिटा सकती या हमें इससे अलग कर सकती है। श्रोताओं, कलिसिया कृतज्ञता पूर्ण ढंग से यह स्वीकार करती है कि मानवीय अधिकारों को पहचान प्रदान करना और उसे घोषित करना मानवीय गरिमा की अपरिहार्य मांगों का प्रभावकारी ढंग से जवाब देने के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। इस संदर्भ में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा कि मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्रों ने 10 दिसंबर 1948 में की, वर्तमान समय में हमारे लिए मानवीय चेतना की एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। यह मानवता के लंबे और कठिन मार्ग में मील का एक पत्थर है। यही कारण है कि ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से मानव अधिकार कोई बाह्य रूप से मानव से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह मानव सम्मान की एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया जाता है। मानव अधिकार अपने में अखंडनीय है, क्योंकि वे मानव के जीवन और मानवीय सम्मान में निहित हैं। यही कारण है कि वे अपने में वैश्विक और अपरिहार्य हैं। विशेष रूप से वे हर नर और नारी के जन सामान्य सम्मान में जड़ित हैं, जहां हम उनकी प्रायोगिक परिणाम और नैतिक प्रभावों को पाते हैं, क्योंकि मानव अधिकारों की घोषणा करना अपने में व्यर्थ होगा यदि सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों और सभी लोगों के लिए उनके सम्मान को सुनिश्चित करने हेतु हर तरह के प्रयास नहीं किए जाते हों। इन सारे अधिकारों में सर्वप्रथम हमारे लिए जीवन का अधिकार आता है, जिसे हम गर्भ धारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक पाते हैं, जिसके बिना हम किसी दूसरे अधिकारों के क्रियान्वयन की असंभावना को पाते हैं। जब मूलभूत अधिकार से हमें वंचित किया जाता है, जैसे कि भ्रूण हत्या, निर्दोषों को मारना और यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु में हम पाते हैं, तो ये हमारे लिए वे सारे विकल्प हैं जिन्हें कलीसिया घोर रूप में गलत मानती है। श्रोताओं, हमारे समय में हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित हम मुख्यतः दो गंभीर खतरों को देखते हैं। पहला, हम इन अधिकारों को स्पष्ट रूप में औपचारिक अर्थ में घोषित पाते हैं, जबकि तकनीकी विकास की निरंतरता में मानव अधिकारों को हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन होता पाते हैं। दूसरा, वास्तव में जिसका मूलभूत आधार पहले में है, उसकी वैश्विकता की बुनियाद को पहचानने में नाकामयाबी है, क्योंकि हमने अपने फैसलों और कानूनों को स्थापित करने वाली मजबूत बुनियाद की तलाश छोड़ दी है। संत पापा फ्रांसिस हमें इस अंतिम तथ्य को सहज में नहीं लेने का आह्वान करते हैं। वे हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराते हैं कि जब कारण गंभीर रूप में मानवीय प्रकृति की जांच करते, तो वे मूल्यों की खोज करने के योग्य होते हैं जो सभंग में लागू होता है, क्योंकि वे मानवीय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि खोज का यह कार्य छोड़ दिया जाता है, तो वे अधिकार जिन्हें आज अपरिहार्य समझा जाता है, भविष्य में उन लोगों द्वारा नकारा या सवाल स्वरूप पूछा जा सकता है जो सत्ता में हैं, शायद केवल उस आबादी से दिखावटी सहमति प्राप्त करते हुए जो डरी हुई यह बहक गई है। श्रोताओं, हर मानव के मूल्य और उनके अधिकारों के प्रति एक गहरी सचेतना ने अल्पसंख्यक के अधिकारों के पहचान में वृद्धि लाई है। फिर भी अब तक हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता बाकी है कि बहुतों के अधिकारों, खासकर महिलाओं के लिए, पूरी दुनिया में समानता और वास्तविक गारंटी दी जाती हो। यह वास्तव में एक सच्चाई है कि दोहरी गरीबी के शिकार वे नारियां हैं जिन्हें परित्याग की स्थिति, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे निरंतर अपने अधिकारों की रक्षा करने में अयोग्य होती हैं। इसलिए यह कहना अपने में पर्याप्त नहीं है, नर और नारियों को बराबर का सम्मान और अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए यह जरूरी है कि यह हमारे ठोस निर्णयों में परिलक्षित हो, जैसे कि कानूने, रोजगार के अवसर, शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्वों और समाज जिस रूप में सुनता तथा नारियों के योगदान को महत्व देता है। जब तक इसमें खाई बनी रहती है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज सही और पूर्ण रूपेण महिलाओं को पुरुषों की भांति समान सम्मान देती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें की फेफड़े में गांठ की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शाम 8 बजे इसकी जानकारी दी कि पोप लियो के फेफड़े की गांठ को हटाने के लिए सर्जरी उम्मीद के मुताबिक समय और तरीके से पूरा हो गया। संत पापा अपने कमरे में लौट आए हैं। वैटिकन प्रेस ऑफिस ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा की। पोप लियो चौदहवें के रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती होने से पहले वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने पोप के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया और पोप की शांत चित्तता की तारीफ की। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हम सभी उनकी शांत चित्तता से विस्मित हुए। उन्होंने उस शांति का जिक्र किया जिसके साथ पोप ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपनी होने वाली सर्जरी के बारे बताया था। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि जैसा कि उन्होंने कहा है, यह शुरुआती चरण में है, इसलिए यह समस्या जल्द से जल्द हल हो सकती है। हमें पूरा भरोसा है। स्वाभाविक रूप से हम सभी अपनी प्रार्थनाओं और स्नेह द्वारा उनके साथ हैं। वैटिकन राज्य सचिव ने बतलाया कि उन्होंने सोमवार दोपहर को पोप लियो से बात की थी। उन्होंने कहा, हमने बहुत शांति से बात की। संत पिता सच में इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल हैं। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद कि तुरंत इसका पता चला और इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, आमतौर पर जब इन चीजों का समय पर पता चलता है तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। कार्डिनल ने पोप के लिए दुनिया भर के लोगों के प्यार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पोप लियो को हर कोई कितना प्यार करता है, उनकी तारीफ करता है और उन्हें फॉलो करता है, और लोगों को बढ़ावा दिया कि वे पोप के इस प्रक्रिया के दौरान अपना सामीप्य दिखाते रहें। एक पत्रकार ने पूछा, क्या यह अचानक हुआ? कार्डिनल परोले ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा पोप ने कहा, यह ईश्वर का आश्चर्य है। सोमवार को टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल इसाओ किकोची ने पोप के साथ अपनी निजी मुलाकात के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने बतलाया कि सुबह 9:30 बजे उन्हें कारितास इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के साथ पोप से मिलने का मौका मिला। कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने उन दोनों के साथ मुलाकात में व्यक्तिगत बातचीत की। कार्डिनल किकोची ने अंत में कहा, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि यह छोटी सर्जरी है और उन्हें अपने शरीर में कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा है। और कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी यात्रा की अपनी योजना बदलने से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने का फैसला किया है। हमें पोप को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। इस दौरान दुनिया भर की कलीसियाओं के धर्मगुरु पोप लियो चौदहवें और उनके फेफड़े में छोटी स्थानीयकृत गांठ को हटाने के लिए सर्जरी में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष सारा मुलायली ने एक्स पर आश्वासन दिया कि वे पोप लियो के लिए दुआ करेंगी और ईश्वर से उनकी सुरक्षा, सामीप्य और देखभाल के लिए प्रार्थना की। वेस्टमिनिस्टर के महाधर्माध्यक्ष और इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड मोत ने भी विशेष प्रार्थना की अपील की। भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने पूरे देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो चौदहवें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, इस समय आइए हम अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक एकजुटता के जरिए संत पिता के प्रति अपना सामीप्य दिखाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनकी सफल सर्जरी, जल्द ठीक होने, अच्छी सेहत और नई ऊर्जा के लिए हमारे धर्म प्रांतों, पल्लियों, धर्म संघी समुदायों और संस्थानों में विशेष प्रार्थनाएं की जाएं। आइए हम पौत्र मिसा के दौरान और विश्वासों की प्रार्थना में भी संत पिता के लिए विशेष मतलब शामिल करें। जब हम पौत्र रोजरी के महीने में हैं, आइए हम अपनी दैनिक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं में पोप लियो चौदहवें को याद करें, खासकर पौत्र रोजरी माला विनती के माध्यम से। कलीसिया की धन्य कुंवारी मरियम, प्यार से उनके लिए प्रार्थना करें और इलाज एवं ठीक होने के इस समय में उनका साथ दें। और इसी तरह थाईलैंड, फिलीपींस एवं अमेरिका के धर्माध्यक्ष भी अपने विश्वासियों के साथ पोप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
पोप लियो की सर्जरी की तैयारी के दौरान रोम के विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना जमेली अस्पताल में रोजरी विनती का नेतृत्व करेंगे और पोप के अगुस्तीनी साथी रोम के निकट माता मरियम तीर्थस्थल में प्रार्थना के लिए एकत्रित होंगे। रोम धम्म प्रांत के लिए पोप के प्रेरित विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना शाम 6 बजे अस्पताल के संत जॉन पॉल द्वितीय चैपल में रोजरी माला विनती का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने संत पिता को कुंवारी मरियम की ममता में मध्यस्थता को सौंपते हुए धम्म प्रांत के प्रत्येक पल्ली और धम्म संघी समुदाय को एक ही समय में रोजरी माला विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। जमेली की प्रार्थना वैटिकन मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित की जाएगी और यह हमारे वैटिकन न्यूज यूट्यूब चैनल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पोप के अगुस्तीनी साथियों ने भी विश्वासियों को उनकी सेहत एवं उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। लीमा के महाधर्मदर्श कार्डिनल कार्लोस कास्टिलो ने पोप की सर्जरी की घोषणा के तुरंत बाद लीमा में लास नाजरेनास तीर्थस्थल में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। पोप लियो के पुराने धम्म प्रांत चिकलायो में सोमवार शाम को महागिरजा घर में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता धर्मदक्ष एडिनसन फारफान कोटोवा ने की और पूरे अफ्रीका में कंशासा के महाधर्मदक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अम्बोंगो जो अफ्रीका एवं मडागास्कर के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, धर्मदक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को प्रार्थना में एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया है। क्यूबेक के महाधर्मदक्ष कार्डिनल जेराल्ड सिप्रियन लाइक्रक्स ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कलीसिया को परिवारों और दंपतियों के लिए उपस्थित रहने की जरूरत है। यह बात वैटिकन की नवीनतम प्रेस ब्रीफिंग में हुई जिसको अमोरिस लेतित्सिया के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार विषय पर किया गया। इस मीटिंग को पोप लियो 14वें ने प्रेरितिक प्रबोधन की 10वीं सालगिरह पर बुलाई है। मीटिंग जिसमें पोप लियो 14वें पूर्वी कलीसिया के प्रमुख धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष विवाहित जोड़े और विशेषज्ञ शामिल रहे बुधवार 14 अक्टूबर को समाप्त होगी ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों का बेहतर तरीके से साथ कैसे दे सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।